कपास दवाई आउ तो बदन द टूल दर्दुन द पारा द पेंसाइम गोले या देवला रही त्री दवाया निजान लवाख लई आउ खपल जुन की खुशहाली आउ सकुन रावा लई दनुरु डेरो मालूमात द पारा 0336 88 85 097 आ प्रोडक्ट

भाई कराची में क्यूटर जिहान स्वीट भाई जाने ऐसे खुशी से बच्चो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। बिल्कुल जी देख पलो खुश हो दे परा नूर सुख मगम जन का वैसा जबरदस्त खबर है कड़े दाजी वही जी सलामी सलाम आई क्यूट हैंड वही ची मोता ढेर जी उद ग्रोन ये भाई प्लीज गजलजार शो पटांग स्टार्ट का प्लीज भाई योर छोटी सिस्टर फ्रॉम टांग वही कहना है छोटी सिस्टर था सिफार कश्मीर प्रोग्राम के जी मैसेज का बोलो जी दे टांग ना है यो यहां मनना और डेडे वेलकम खुश आमदेद पीछे गजलदार प्रोग्राम पर टांग मैंने स्टार्ट कर दी चाहे कोशिश भी कहूँ शाम यो जहान मनना है फसल रहता उसे रिफत हटा कर अगर उसीदन का शिमाली वाजिस्तान के प्रोग्राम आवर जी राज भाई हर कहलाए वायम ठुला वरिदुन का दाओ सलाम वाई चे दा खबर आओ खना रिफत दा खबर है जी

जी बिल्कुल एवरीथिंग प्रोग्राम से गांव समक्ष ले सुर दे 0927291299 माने कालो खली और सर सिकमने का ना 5083 बने सवाल की मैसेज हां और शामिल अभी समर हदी बिल लिसनर समय द टाइम दे मिलकर गवा जरूरी टोल जरूर दार तो के ना सुख सुख प्रोग्राम और वे या सो के ना और वे न चिमिरता पता होला की चार प्रोग्राम सो कुरवी और सबो सिकमने का ना दे 1279 1 बजे पर सिकम प्रोग्राम आए 500 बिल्कुल दे ना दे बाहर और सर सदा वफा वाल उठना भी टोल खंदी ना मासे जरो खले टोल काल पक्षो के खंदी ना मासे जरो खले जी बिल्कुल एवरीथिंग प्रोग्राम से गप शाय शेरी दाय और तो सब बिल्कुल रतला शे और मिस्टर किमने का दिन क्लश है और साइदो आयो चना गाड़ी ने खिगेरा खामोशी सरावरी न खामोशी सरावर है।

0: अच्छा साइड बस तड़तंग वाला दर था लगा
1: साइड
0: ढेर से थमाना यो जहान होना विचे तड़तंग वाला रोता वाला गाना तड़तंग वाला और तवला गवी के ना कसरंग मुखवाशा दो ना महला गवी अनला गवी।

बिल्कुल प्रोग्राम के खेल टाइम से अब लिसनर पूरे प्रोग्राम से गाना मुआजे वंदी नमा से सुनो खले एंटरटेनमेंट पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को डेर जो तो खानों के कहना अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम खानों के कहना

0: स्पष्ट में बोलते हैं।
1: हाँ ना।
0: अच्छा, इसलिए आप जो है उर्द की प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं।
1: हाँ ना।
0: अच्छा, इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, फिर मैं आपको डांटूंगा कि आप ऐसा करें कि ये इधर जो है सब पठान है और आप इधर जो है उर्दू बोल रहे हैं। बस आप आपको जो भी इंग्लिश आती है या इसके अलावा परसों आती है या इसके अलावा उर्दू जो भी बोले इंशाल्लाह हम आपके साथ बोलेंगे। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा तो इंशाल्लाह आएंगे।
1: हाँ हेलो, आपका शो बहुत जबरदस्त है, सुना बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा
1: और मेरी फरमाइश।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश होगी उर्दू वाला या पश्तो वाला?
1: वो पश्तो वाला है।
0: अच्छा, वो पश्तो वाला है।
1: हाँ,
0: जुबेर नवाज की तरफ। अच्छा, जुबेर नवाज टपे, जुबेर नवाज वाले तो बहुत ज्यादा टपे, कौन सा जुबेर नवाज वाला टपे आपको चाहिए?
1: तो आपको पसंद
0: हो? अच्छा, मैंने बिल्कुल सुनाऊंगी। अच्छा, इंशाल्लाह यही सॉन्ग है, मेरे ख्याल में न्यू सॉन्ग आया है लेवाने जानान। इंशाल्लाह ये जो है आपके लिए स्पेशल प्ले होगी। ठीक है,
1: सही
0: है। और अस्मा गुल को दुआ सलाम। वालेकुम सलाम, अस्मा गुल को आपको बिल्कुल सलाम पहुंच गया। डेरा डेरा मनना शुक्रिया योजा हाँ मन।

अच्छे भाई देख लगा टाइम चिकला हाँ शो की क्या ना नौ पे बैकग्राउंड के जगह में देखा ना गाने जरूर चलावा साइडो नहीं नहीं गाने चलावा और बीजीएम चिकन का ना लश्की चलावा चश्मा साइडो देर जो तो माना तू सब बिल्कुल गाने ख्वान दर के भी नौ पे बीजीएम शो गाने डर जो तेरे तक चलावी के तू सब सरंगे ख्वाश

0: जी टीम 10 बजाई कहना छे दुआ मिनट आदि बल्कि यू ये ऊँचा हुआ और जी एक ना बात छे की मैं दो बेवे जजात खाऊ खली
1: बिल्कुल शेख खान भाई टीम पे हम पिराशम इगने लावा और दिंगी ता उनता है जा खाम देर को आकेस्ता दिकुन दोरना तुसे खाम खा का मिश शेफानी वेसरा नदर बंदे बड़ावी
0: आदा ना पे आदा खली ना
1: कोशिश के लगा देव वेसा फीमेल विच मिश्ते लगा नर अरवी
0: जी जी जी
1: बिल्कुल प्रोडक्ट पैदा न करो से दुआ नंबर भी कोशिश खुदे
0: मतलब नोरे कंपनी वाले प्रोडक्ट में लावी जी आगा था बेनो खोली वेदी जी एरी का खुजेफा कंपनी वाले भी खोरुए का
1: नहीं
0: रुके वेदा डालोड़ा
1: बिल्कुल
0: बल्दी का अंदर तवर से ऐसा है अगिसरा उधर ता मिला वीजी जीड़ रंगी ने दी आर शीज
1: गोल्डन
0: गोल्डन
1: नता मिला वीजी मिश्ता काल का से बदा नंबर बंदे 0331 39 736 36
0: बिल्कुल जी
1: चलो यार अपमान शहीद खान भाई
0: ओके डेरा डेरा मनना डेरा शुक्रिया जनाब दावाद मिश्रा खुजेफा जी खबर भाई वर बदले हजो खदर ना ओखला इजाजत कदरमने और दिन के शपे लास बजे उनन बियाद तुसे सरा मुलाकात कीजी नो जनाब शपे लास नौखला 12 बजे पर जत तुसे पर खिदमत से हाजिर रहो नो दा प्रोग्राम अरवेदल माखरा वे तरगे वख पर द लोई अल्लाह पा

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ούγε γέζι από τα σαπάρσι δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα με ζει μόχο κορτά νέσνελ ο μάλτι νέσνελ. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κέζι δαστράγγε στα ραπρόβρε.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλέ βε χάρβα τε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Ο τσεκάρανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέτη. Ο στόλ κούρβολα να χωσούλτι.
0: अच्छा मिस जी बह कुर्ता जहर सरा ब्रो उदार इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शुले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ এর সেবসার অর্ডার তে মিলাবে।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।